0: राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौं। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: रेडियो प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्ट्ज।
1: खुशी को खबर
2: तपाई हाम्रो शहर तुलसी